आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है, आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से रब्ता कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन।
1: From the heart of Bedfordshire in Luton, this is Inspire FM.

आप अपनी बेगम से, अपने शौहर से बात करते हैं, आपको ये नहीं लगता कि आप दो लोग हैं जो एक बंदा था, आप दो हैं, दोनों खुशी से मिलके दुनिया के किसी भी मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। अगर दोनों की फैमिलीज में भी कुछ बलाएं हैं तो उनको भी काबू किया जा सकता है, बिकॉज आप एक हैं। इसको ये ना हो जाए, उसको वो ना हो जाए, मेरी माँ आ गई तो ऐसे ना हो जाए, उसकी माँ आ गई तो ऐसे ना हो जाए, फलां, इस किस्म की जो कमज़ोर बीमारियां और रिश्ते जिनको हमने नाम रखा हुआ है ना, आपको लगता है रब आपसे ये चाहता था कि आओ दुनिया में सिर्फ जाके पैसे कमाओ और ये सास बहू और बेटा बेटी और माँ बाप और मियाँ बीवी का ये खेल खेलते रहो और इसी में देसी बंदे चुर मुर हो जाओ आपस में। हमारी पूरी ज़िंदगी जो है ना, ये एक जो फैमिली ड्रामा है ना हमारा, इस ड्रामे को डील करने में हमारी सारी प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। हम एक घर को ही, इन्हीं सियासतदानों को जो घर में हमारे पैदा होते हैं, जो गली में कहीं, जिनकी ज़रा इज्जत नहीं होती, कख इनको दुनिया का नहीं पता होता, ना इन्होंने कोई बिजनेस किया होता है, ना इन्होंने कोई पैसे कमाए होते हैं, ना इन्होंने लोगों के साथ कोई कम्युनिकेशन करके रिश्ते संभाले हुए होते हैं, लेकिन इन्हें सब पता होता है। ये अकलमंद होते हैं, और जो लोग काम करने वाले होते हैं, जो दुनिया को डील कर रहे होते हैं, वो कम अकल होते हैं। अब जिसको ये अकल की मार पड़ी हो, जिसको ये मत इतनी मारी गई हो, आप उनका क्या कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसी तरह पढ़े लिखे लोगों के जो हाल है, आप यकीन करें, मैं गांव से हूं, हमारे गांव के अनपढ़ लोग, मैं 90% जिन पढ़े लिखे लोगों को जानता हूं, उनसे 10 गुना बेहतर है, मर्द भी और औरतें भी। बेसिक फोक विजडम के जरिए, बेसिक घरों में जो चीज़ें देखकर कई लेडीज़ और कई जेंटलमैन जो हैं वो इतने अच्छे फैसले करते हैं, उनकी नस्लें संवर जाती हैं। और पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जाहिल लोग कहना चाहिए, वो रोज़ अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। मुश्किल से कमाया हुआ पैसा अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, जज्बाती ड्रामे की वजह से, या कीपिंग अप विद जॉन्स की वजह से ज़ाया कर देते हैं। अपनी एनर्जीज, अपने रिश्ते, अपने ताल्लुकात, उनको पता ही नहीं होता। हम लोग चैलेंज्ड हैं, हम लोग लाइफ से चैलेंज्ड हैं बेसिकली। जैसे मेडिकल कंडीशन होती है ना, हमें लाइफ की कंडीशन के अंदर हमारे बहुत बुरे हालात, और हम किसी से ना सीखना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना अपनी कमजोरियों से सीखना चाहते हैं। हर बंदा झूठ बोलता है कि वो बड़ा आसान है, वो तो किसी के साथ भी चल सकता है, वो तो हस्बैंड बनने के लिए कमाल मटेरियल है। कोई लेडीज वाइफ बनने के लिए अपने आप को बस मटेरियल ही समझती रहती हैं, इस मटेरियल के साथ ही वो सारी जिंदगी इस तरह की चली जाती है। कुछ लोग अपने आप को बेस्ट फ्रेंड समझते हैं, फ्रेंड के दुख के का उनको एहसास ना होता है, ना कभी होगा। मुझे आपसे, मेरे को बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है, अक्सर मेरे दोस्त वगैरह मुझे कभी कभी कहते हैं ना, मेरा ख्याल है आपकी इस चीज़ में बड़े हाई स्टैंडर्ड है, तो मेरा जवाब होता है, अगर मेरे हाई स्टैंडर्ड होते तो आप मेरे दोस्त होते, आप रोंदू हर वक्त के मेरे दोस्त होते, आप जिनका कोई मसला सीधा नहीं होता ये दोस्त होते। तो कोई हाई स्टैंडर्ड नहीं है, आप बेसिक सा स्टैंडर्ड है। क्या आप अपने जिस्मानी, जहनी, रूहानी खर्चे खुद उठा सकते हैं? क्या आप अकेले में सर्वाइव कर सकते हैं? क्या आप अपने थॉट से अपने आप को तो पागल नहीं किए जा रहे? क्या आपका अपने ऊपर काबू है कि नहीं? क्या आप कोई भी कमिटमेंट करने से पहले सोचते हैं कि आपके पल्ले कितने ढेले हैं, और इस मेले में जो आप जा रहे हैं उसमें आप कुछ कर पाएंगे? किसी भी इंसान को जब आप सोचते हैं कि आप उनके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, तो क्या सोचते हैं आप कि वो कौन है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप कौन है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? ये कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। क्या आप ये सोचते हैं कि जी इंसानों के साथ, इन लोगों के साथ इनसे सीखा जा सकता है, तो इनसे इतना ही रिश्ता रख लिया जाए, ये जो बंदा है, ये बंदी, इनके साथ अपनी इमोशनल किस्म की ड्रामेबाजी के बजाय एक लॉजिकल सा रिलेशनशिप भी रखा जा सकता है, कोई कैथार्टिक कैथारसिस हो अगर किसी बंदे से बात करके, या उसके साथ मिलकर कोई अच्छी एनर्जी आप लेके तो फिर अपनी ज़िंदगी में जाके उसको डील कर सकें। हमें कुछ नहीं पता है। 40 साल तक मैं अपनी ज़िंदगी में चुप रहा कि यार शायद मैं ही सही नहीं सोच रहा, इन तमाम लोगों को बहुत कुछ पता है। फिर क्या हुआ? फिर जिस कारपेट को ऊपर रख कर लोगों ने छुपाया हुआ था अपने आप को, वो जगह जगह से मट्टी दिखाने शुरू हो गया, और उस कारपेट के बेड़े गर्क होने शुरू हो गए। कुछ लोगों के जहनी मसाइल सामने आने लग गए, कुछ के जिस्मानी आने लग गए, कुछ के फाइनेंशियल मसाइल सामने आने लग गए, और कि रूहानी तो हम खैर रू नॉर्मली वेन एवर वी टॉक अबाउट सोल, तो मेरे दोस्त कहते थे ब्रदर यू जस्ट लॉस्ट मी एट सोल, तो वो तो बहुत बात की बात है। बेसिक जो चीज़ें कुछ नहीं कर पाते, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वो अपना बनने वाला कोई आदमी हमें नजर

0: नहीं आता। हर चीज, या पता नहीं हम कौन सी कोई जज्बाती बीमारी का शिकार है, या वो जो अमेज़न के जंगलों में जो बैक्टीरिया है ना, जो बंदे के अंदर दाखिल हो जाता है और उसके माइंड को कंट्रोल करके अपनी मर्जी की चीजें कर लेता है। वो क्या नाम था उसका, ओफियो कोडिसेप यूनिलैटरलस। बिल्कुल उसी तरह मुझे लगता है कोई हमारे कुछ, हम ऐसे कॉन्ड हुए हैं कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको समझ आ रही है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।
1: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर। आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी में की गई इन्वेस्टमेंट के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं और एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ब्रिटिश आवाम की अक्सरियत जहनी दबाव और परेशानी से दोचार है। और अब इन खबरों की तफसील। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईरान पहले ही रशिया को हथियार फराहम करके यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल हो चुका है, मुमकिना नए खतरात के लिए मोहतात रहना ज़रूरी है। ईरान और नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा लेकर हमारी सालमियत को मजीद खतरे में डाल दिया है। ईरान ने रशिया को ड्रोन्स की बड़ी खेप फराहम करके उसे दिफाई लिहाज से मजीद मुस्तहकम किया। शाम के प्रेसिडेंट अहमद शरा ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का इंकशाफ किया है कि शाम इसराइल के साथ एक सिक्योरिटी मुआहदा तय करने के लिए कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसराइल के साथ सिक्योरिटी मुआहदा जाम अमन की राह हमवार कर सकता है। इंटरव्यू में अहमद शरा ने इस बात की भी तस्दीक की कि शाम का अपने हमसाया मुल्क लिबनान में किसी फौजी मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने यूएई के साथ मिलकर पहली दो तरफा मसनूई जहानत एआई टास्क फोर्स के क्याम का ऐलान किया है, जिसका मकसद दिफाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देना है। सेंटकॉम के मुताबिक मुआहदा तय पाने के बाद एआई टास्क फोर्स आइंदा चंद हफ्तों में बाकायदा काम का आगाज करेगी। इस टास्क फोर्स में अमरीका और यूएई के 20 माहरीन शामिल होंगे जो मुश्तरका मंसूबों पर मिलकर काम करेंगे। मेट पुलिस का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी में की गई इन्वेस्टमेंट के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। ड्रोन्स और ताकतवर ई बाइक्स की मदद से हर माह तकरीबन 1000 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि लंदन के कई इलाकों में जराइम की शरह में नुमाया कमी वाक़ हुई है। दूसरी जनब लंदन के मेयर सर सादिक खान ने कहा है कि वेस्ट एंड में गश्त करने वाले पुलिस अफसरान की तादाद दुगनी करने से जराइम की शरह निस्फ रह गई है। उन्होंने बताया कि सिटी हॉल की माली मामलत से कायम किया गया नया वेस्ट एंड कमांड सेल भी जराइम की रोकथाम में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने गजा के मखसूस इलाकों में इंटरनेशनल फोर्स को दाखिले की इजाज़त दे दी है। इस मिशन को इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का नाम दिया गया है, जिसमें तकरीबन 200 अहलकार शामिल होंगे जो युगांडा और मराकश जैसे दोस्त मुल्कों से आएंगे। इस वक्त इसराइल गजा के तकरीबन 64% इलाके पर कंट्रोल रखता है, जबकि तकरीबन 20 लाख अफराद महदूद हिस्से में हमास के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में खेमों या तबाहशुदा अमारतों में इंतहाई बुरी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। शाम के प्रेसिडेंट अहमद शरा ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का इंकशाफ किया है कि शाम इसराइल के साथ एक सिक्योरिटी मुआहदा तय करने के लिए कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसराइल के साथ सिक्योरिटी मुआहदा जाम अमन की राह। सामीन, ये थीं इस वक्त तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
2: Coming up next, a rise to success with Sister Jihad. This is Inspire FM.
1: Inspire FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. That whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
1: Last time on Akhri Mojza.
2: 15 ayat ke baad, Allah Ta'ala farma rahe hain, uske kaan par khatama ala sam'i wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Sunne ka zikr pehle, kyunki yahan asal jurm sunne wala tha. Ab andaza karo, कहां से कहां बात को जोड़ा जा रहा है। ये भी नहीं कि उसके फौरन बाद आ रही है, 15 आयात बाद वो बात आ रही है, और वहां भी इस तरह का तनासुब, इस तरह का कलाम। तो ये चीजें हैं जो जब हम छोटी छोटी तरतीब पर भी हम गौर करते हैं तो ये बात सामने आती है।

हमीदुद्दीन फराही साहब बड़ी प्यारी बात किया करते थे। उन्होंने जो दलाइल उन निज़ाम किताब लिखी अपनी, उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। वैसे आप में से जो अरबी से कुछ आपका शगफ़ है, आपको लगाव है, तो उनकी किताबें अरबी में ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। उस इंसान को जो अरबी में महारत थी ना, मैं हैरान रह जाता हूँ। उनका खुतबा है, अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास बलागत दी थी, अरबी ज़बान पर उनको अबूर था और इब्रानी पर भी उनको अबूर था असल में। तो मैं इसकी बात पहले मैं आपको बताता हूँ। बड़ी प्यारी बात उन्होंने की थी कि जिस रब ने एक एक उंगली की एक एक हड्डी बड़े निज़ाम से बनाई, और तुम लोग कहते हो कि कुरान में निज़ाम नहीं है। उसने अपने खिलाफ, जिसने पूरी कायनात का एक निज़ाम बनाया और हर चीज़ मुरतब की, उसने अपने कलाम को मुरतब नहीं किया। पहले सफ़े पे दलाइल उन निज़ाम, यानी कुरान में जो नज़म है, जो उसका एक उसकी एक तरतीब है, उसके क्या दलाइल हैं, उसके पहले सफ़े पे उन्होंने ये बात कही। मैंने कहा बाकी पढ़ने की, अब मैं पढ़ूँ क्या इसके बाद। तो उन्होंने जो अल्लाह ताला की हम की थी उस किताब में, बड़ी प्यारी हम थी, मुझे शायद थोड़ी सी याद है, मैं कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सानिउल खल्क़ी अला अहसनी क़वाम व अकमली निज़ाम। ऐसे अल्लाह की हम जिसने तमाम खल्क को बनाया बड़े ही बेहतरीन खूबसूरत निज़ाम से और बहुत ही मुकम्मल कायम तरीके से, यानी एक एक जगह को सही तरीके से खड़ा करके। अलवादिल अशियाई फ़ी अजदरी मकाम, जो हर चीज़ को अपने सबसे मुनासिब जगह पर हर चीज़ को डालता है, एक एक सेल को मुनासिब जगह, एक एक न्यूरॉन को मुनासिब जगह, एक एक इलेक्ट्रॉन को मुनासिब जगह, एक एक सब एटॉमिक पार्टिकल को मुनासिब जगह, एक एक प्लैनेट को, एक एक गैलेक्सी को मुनासिब जगह पर डालता है, एक एक तिनके को, एक एक पत्ते को मुनासिब जगह पर डालता है। अलवादिल अशियाई फ़ी अजदरी मकाम। फिर कहते हैं वस्सलातु वस्सलामु, जब आप सुनते हैं ना वस्सलातु वस्सलामु, किसका जिक्र आने वाला है? रसूल, तो आप सोचोगे कहेंगे वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ना, वस्सलातु वस्सलामु अला अल मुअय्यद बिअबलगी कलाम। सलात और सलाम हो उस हस्ती पर जिसको अल्लाह ताला ने तायीद की अपने सबसे बलीग कलाम से। बिअबलगी कलाम व अरफ़की मसाम, और सबसे नरम पैगाम से, दिल को नरम करने वाले पैगाम से। फिर कहते हैं वअला अस्हाबिही वअला आलिही वअस्हाबिहिल किराम, और उनके अस्हाब पर और उनके आल पर जिनकी बड़ी इज्जत हो। कबद्रिन तजल्ला मिन बैनिल गमाम, जैसे एक चांद निकला हो बादलों में से। इला मदल लयाली वल अय्याम, जब तक दिन चलें और जब तक रात चलें। फिर कहते हैं वहादल किताब अफरदनाहु अला दलाइल निज़ाम, और ये किताब मैंने ख़ास मुख्तस की है कुरान के निज़ाम पर। पहले फसफे में जो शायरी लिखी है ना कुरान, जो हमद की, उस हम के अंदर ही सारी बात बयान कर दी। मेरा रब हर चीज़ अपनी जगह पर रखता है, और ये किताब मैंने शायद सोचा कि मैं लिख दूँ कि मेरे रब ने अपनी किताब में हर चीज़ अपनी जगह पर कैसे रखी, उस पर मैं ये किताब लिख। क्या क्या बात करते हैं वो भी, सुभान अल्लाह। तो मैंने ये खुतबा याद किया, इनके दो तीन खुतबे मैंने, वो हमद हैं, तो मैं खुतबा जब अरबी में देता हूँ तो मैं उनका खुतबा इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं जहाँ टेक्सास में मैं खुतबा देता हूँ, वहाँ अरब ज़्यादा है हमारे, तो मैंने खुतबा दिया। उनका एक और खुतबा है जो मैं आम आप लोग सुना, जो मेरे खुतबे सुनते हैं, मैं यूज़ करता हूँ उनका खुतबा। यू नो अल्हम्दुलिल्लाह खालिकुल वुजूद मिन अलअदम व जाइलुन नूर मिन अज़्ज़लम, उनका खुतबा है। मैं इस्तेमाल किया तो एक इराकी साहब मेरे पास आए, والله يا شيخ من اين جئت بهذا هذه الخطبه كانت رائعه جدا جدا يعني برا عظيم خطبه تھا یہ کس کا خطبہ تھا لا منك آپ کا تو نہیں تھا میں نے کہا لا مني لا لا قطع السعودي مصري من كان سعودي تھے مثل قال قلت میں نے ان سے کہا ہندی ہندی كان ہندی لا ابدا لا قلت نعم كان ہندی हमारा एक हमारे हमारी हिस्ट्री में हमारे उलमा के जो कारनामे हैं ना, वो हम भूल गए हैं। इस खित्ते के उलमा, इस खित्ते में जो काम हुआ है ना, वो अंदाज़ा नहीं, हमें अंदाज़ा नहीं है, हमने उसको हाईलाइट नहीं किया। मैं गया था वहाँ पर, मुझे रोना आ गया था, मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी गया था कुछ साल पहले, अभी कुछ महीने में था पहले वहाँ पर, उनकी फैकल्टी से मेरी बात हो रही थी,
कुरान स्टडीज पर। एक उससे कुछ साल पहले मुझे एक बड़ा दिलचस्प नौजवान मिला, वहाँ पर सूडान से आया हुआ था, वहाँ पीएचडी कर रहा था कुरान पे मलेशिया में गोमबाक में। मैंने कहा किस चीज़ पे पीएचडी कर रहा हूँ? कहता हमीदुद्दीन फराइज साहब पे पीएचडी कर रहा हूँ। उनकी 45 किताबें ढूंढ ढूंढ के जो अरबी में लिखी, जो कुछ उर्दू में लिखा, एक दो फारसी में भी लिखी, एक दो इंग्लिश में भी उन्होंने आर्टिकल लिखे, वो सारे कहीं ना कहीं से जमा करके उनमें पूरी पीएचडी पे काम कर रहा था। और ये एक तो मुझे खुशी भी हुई और उदासी भी हुई कि यार मलेशिया में जाके एक सूडानी लड़का जो हमारी हेरिटेज है, हमारे उलमा की हेरिटेज है, उसको वो उस पर वहाँ पर वो काम हो रहा है। क्या हमारी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है और उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। अच्छा खैर, यहाँ पर जिन्नात के और इस बॉर्डर को क्रॉस करने के बारे में मैं एक बात बता दूँ। मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की है, कुरान में जो सूरतें हैं ना उनका एक नस्ख है। नस्ख अरबी में कहते हैं पिरोने को भी, उसका भी एक लफ्ज़ है। जैसे आप जो जो स्वेटर बनाती है ना दादियाँ और नानियाँ, उसको भी नस्ख कहा जाता है अरबी में। तो जो नस्ख है ना आयात का तनासुख, उसके हिसाब से जब इस आयत को पढ़ें कि जिन से और इंस से कहा जा रहा है कि निकल जाओ आसमानों की तरफ। अब हुआ क्या कि 60s में मून लैंडिंग हुई, आपको पता होगा। जब मून लैंडिंग हुई तो हमारे यहाँ एक ईमान का फितना बढ़ गया, वो अल्लाह ताला ने तो किया सी नहीं जा सकते, ये कैसे पहुंच गए? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा इन तनफुदू बिन अख्तार समावाती वल अर्द फनफुदू। उसके पहला बुनियादी जवाब पहले आप समझ लें, पहला बुनियादी जवाब, और वो ये है कि सूरतुर रहमान की जिस आयत से ये बात ली जा रही है वहां बात हो रही है क़ियामत के शुरू होने की। क़ियामत शुरू हो गई है। अब क़ियामत शुरू हुई है तो अल्लाह ताला कहते हैं सनफ़रुगु लकुम अय्युहा थक़लान, क्योंकि इंसानियत समझती थी खुदा ने कायनात बनाई है, इतने बड़े बड़े अजराम बनाए हैं, इतने बड़े बड़े काम करता है, उसको मेरी थोड़ी सी रिश्वत से क्या मतलब यार, मैं इधर थोड़ा बहुत झूठ बोल लूँ, ये मैंने कुछ देख लिया, ये कुछ कर लिया, इससे उसको उसको बड़े काम है करने को। उसको कोई ब्लैक होल देखना होगा कहीं पे, उसको कोई वॉल्केनोज देखने होंगे, कोई स्टार गैलेक्सीज होंगी, कोई कितने बड़े बड़े उसको काम करने, मेरे काम में क्यों पड़ेगा, उसको और कोई काम नहीं है करने को। तो इंसान क्या समझता है कि अल्लाह ताला बड़े कामों में मसरूफ है। उसकी मैं ज़हनियत की मिसाल देता हूँ आपको। टीचर जब ना कभी कभी डेस्क पे बैठा ऐसे होमवर्क चेक कर रहा होता है, उसको जो जो भी है आसमानों और ज़मीन में वो उसी से उसी का तलबगार है, उसी से कोई ना कोई मुतालबा कर रहा है उसको, यानी एक लातादाद हद के लातादाद मुतालबे उसकी तरफ आ रहे हैं, और वो हर वक्त हर आन किसी ना किसी ऐसे काम में लगा हुआ है जो सिर्फ वही कर सकता है। उसको शान कहते हैं, शान कहते हैं ऐसा काम जो कोई और ना कर सके। तो यानी इस आयत से शायद किसी को गलत फहमी हो कि वो बहुत ही मसरूफ है, कुल्ला योमिन हुआ फी शान। उसका जवाब आते अल्लाह ने खुद ही कह दिया, अच्छा तुम समझते हो मैं मसरूफ हूं, सनफ़रुगु लकुम अय्युहा थक़लान, हम अपने आप को तुम सब के लिए फारिग करते हैं। अब तुम समझते हो मसरूफ हैं हम, चलो फारिग किया हमने अपने आप को तुम दोनों के लिए। तुम दोनों क्या थक़लान, थकील किस चीज़ को कहते हैं उर्दू में, थकील भारी चीज़ को, थक़लान तुम बड़ी भारी तादाद इंसानों की और तुम्हारी इतनी भारी तादाद जिन्नात की, तुम समझते हो इतने सारे हो, एक दो तो बीच में से फिसल के लॉ से निकल जाएंगे ना, कोई ना कोई तो खिसक के घुस जाएगा स्टेडियम के अंदर या स्टेडियम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो कोई ना, जहाँ क्राउड ज़्यादा होता है वहाँ चोरी का इम्कान ज़्यादा होता है, बचने का इम्कान ज़्यादा होता है। पुलिस किसी के पीछे जा रही है, बड़ा क्राउड है, तो वो क्राउड में घुस के निकल जाएगा। अस्तकलान कहते हैं बहुत बड़ी तादाद हो तुम, चलो हम फारिग करते हैं अपने आप को, तंजिया कलाम है कुरान में। फिर कहा अच्छा अब जब फारिग कर लिया तो इंसान को पता है पकड़ आने वाली है, जिनको भी पता है कि अब क्या होने वाला है, पकड़ आने वाली है। अब इंसान जब भाग के कहीं छुपने की कोशिश करेगा तो कहाँ जाएगा, जमीन में कहीं घुसेगा, कोई गार ढूंढेगा, कोई बेसमेंट ढूंढेगा, कहीं ढूंढेगा, कहीं मैं घुस जाऊं, कहीं बच जाऊं। जिन जो है वो कहेगा तुम लोग क्या घूमो छुपोगे, मैं कहाँ निकल रहा हूं आसमान में। अब सुनना इस आयत को दोबारा, या माशर अल जिन्नी वल इंसी, दो ग्रोह जिन और इंस, इन इस्तताअतुम अन तन्फुज़ु मिन अक़्तारिस समावाति वल अर्दी, तुमने आसमान में कहीं निकल के घुसना है, किससे कहा जा रहा है, जिनसे,
तुमने जमीन में जाके कहीं घुसना है, किससे कहा जा रहा है? इंसान से। चलो जाओ, कसर निकाल लो, भागना है भागो, देखते हैं कितनी दूर जाते हो। ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। फिर अच्छा, इंसान भाग के जा रहा है, कहीं दूर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगली आयत में कह दिया यूरसलू अलैकुम शुआबुम मिन नार, ऊपर से हवाई फायरिंग हो रही है, मीटर बम गिराए जा रहे हैं। इधर भाग रहा है इंसान, इधर बम गिरा, उधर गिरा, उधर बम गिरा, इधर गिरा, इधर आया, उधर बम। जहां गिरता है, जहां धमाका होता है, उसकी तरफ इंसान भागता है, उससे दूसरी तरफ भागता है, उसे दूसरी, वो भागने की कोशिश कर रहे, अल्लाह उसकी, उसके भागने को रीडायरेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये तो जिन्नात का, ये इंसान का मसला हुआ, और जिन्नात भी बेचारे अब ऊपर जाएंगे, फायरिंग कहाँ से आ रही है? आसमान से आ रही है। लेकिन वो भी अभी तो इशारा हुआ कि ज़मीन पर फायरिंग हो रही है, अगर कहीं फायरिंग से बच के इंसान जिन जो है ऊपर निकलने की कोशिश भी करे, तो कह दिया फ़ैदन शक्क़त इस्समा, आसमान सारा फाड़ दिया मैंने, जब सारा इंसान फटके खुल जाए, वो उसकी सारी एस्केप का, उसके बचने का सारा इम्कान क्या था, जिनका आसमान, आसमान ही फाड़ दिया मेरे रब ने। फ़कानत वर्दतन कद्दीहान। तो ये एक ख़ास तस्वीर खींची जा रही है, इसका मून लैंडिंग से ताल्लुक नहीं है, इसका क़यामत के दिन से ताल्लुक है। इसको सही सियाक में समझने की ज़रूरत है। जो बात कही जा रही होती है, अगर आप आयत को उसके कॉन्टेक्स्ट से निकालोगे ना, तो फिर ठीक है, उसमें दूसरे दर्जे में, तीसरे दर्जे में किसी बात की तरफ इशारा हो तो हो, लेकिन पहला हक बनता है कि जो बात कही जा रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, उसको कैसे समझा जाए पहले। ओके, अभी की आखिरी मिसाल और सबसे खूबसूरत मिसाल मेरे नज़दीक, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم। आम तौर पर अल्लाह अपने दो नाम इस्तेमाल करते हैं आयात के आखिर में। आयात के आखिर को तफसीरी ज़बान में फवासिल कहा जाता है, फवासिल, उसकी वाहिद है फासिला और जमा है फवासिल, तो इनका नाम होता है अरबी में फवासिल कुरआनिया और फासिला कुरआनिया और फवासिल आयात। उर्दू में फासले का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डिस्टेंस के लिए, वो अरबी में बुअद है या मसाफा है, फासला अरबी में अलग है। फसल आखिर को कहते हैं और फसल अलग करने को भी कहते हैं, तो जो चीज़ अगली आयत से अलग करे उनका नाम है फवासिल, फवासिल कुरानिया। अच्छा खैर, तो आयत के फवासिल में दो नाम आम तौर पर आते हैं, आपको मालूम होगा समीउल अलीम, अलगफूरुर रहीम, अज़ीज़ुन हकीम, आपने कई दफ़ा सुना है। इस आयत में कितने नाम आ रहे हैं अल्लाह ताला के? चार, अल मलिक, अलकुद्दूस, अलअज़ीज़, अलहकीम। अब इनके थोड़े से मायने समझ लेते हैं, फिर इसकी तरतीब की तरफ कुछ गौर करते हैं। पहली बात की अल मलिक, जो फातिहा में भी हम पढ़ चुके, बादशाह, जो बादशाह है, ठीक है। अलकुद्दूस, जो पाक तरीन है, जो पाक तरीन है, जिससे पाकिजगी, सारी पाकिजगी उसी से आती है और वही असल पाक है, ऐसे जैसे उसके अलावा कोई चीज़ पाक ऐसी हो नहीं सकती, वो है अल कुद्दूस। इसीलिए कहा रूह अल कुद्दूस, जो उसकी तरफ नसब की गई है, यानी पाकीज़गी वाली रूह, और वो भी अल कुद्दूस से रूह अल कुद्दूस, जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम। अच्छा, फिर है अल अज़ीज़। अल अज़ीज़ कहते हैं अथॉरिटी को। अल अज़ीज़ में दो, इज़्ज़त का लफ्ज़ उर्दू में एक मायना है, इज़्ज़त का अरबी में उसके दो मायने हैं। ये भी उन्हें अल्फाज में से है जिसमें उर्दू में कुछ कमी रह जाती है, तो इज्जत को अरबी के एतबार से समझ लें। इज्जत, इसका पहला मायना है इक्तदार, और दूसरा मायना है वो इज्जत जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इशारा इस बात की तरफ है कि जिसके पास इक्तदार होता है, उसकी इक्तदार की बुनियाद पर उसकी क्या होती है? इज्जत होती है। तो हमारे यहाँ वो एहतराम वाला पहलू ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जा असल में अरबी में इस्तेमाल होता है इक्तदार के लिए, इसीलिए अज़ीज़ मिनिस्टर को कहते हैं। सूरह यूसुफ़ में उसके पास इक्तदार था ना, इमरातुल अज़ीज़, इज्जतदार नहीं है वो, अथॉरिटी वाला है, इसलिए उसको अज़ीज़ कहा गया, ठीक है। तो ये है अल अज़ीज़। और फिर आखिर में है, और एक और बात, अज़ीज़ का लफ्ज़ हुकूमती इक्तदार वाले के लिए भी अरबी में बहुत इस्तेमाल हुआ है, जैसे सूरह यूसुफ़ में भी है, वैसे भी अगर कोई हुकूमत का नुमाइंदा हो या हुकूमत का इक्तदार किसी के हाथ में हो, तो जब वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ कर रहा होता है और लॉ इशू कर रहा होता है, तो उसके लिए भी अज़ीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और हकीम तो हमारे यहाँ भी वही है जो अरबी में है, हिकमत वाला, ठीक है। तो चार नाम हुए अल्लाह ताला के।
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بات نہیں کی، اصل بات کی ہے اپنے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہتے ہیں کہ انہوں نے امیین میں سے جو لوگ، جن لوگوں کا پڑھنے کا، کتابیں لکھنے کا، اس کا ان کی کوئی تاریخ نہیں تھی، امی ام سے نکلا ہے، ام کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ماں کو، جو اتنا تعلیم سے ناواقف ہو جیسے بچہ ماں سے نکلنے کے بعد ناواقف ہوتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف کیا جاتا ہے امی سے کہ ان کے ہاں تعلیم کا رواج نہیں تھا، یونیورسٹی کا رواج نہیں تھا، پڑھنے پڑھانے کا زیادہ تر رواج نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے جو پڑھ سکیں پڑھا سکیں. ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے، جو پھر کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کو اپنی آیات پڑھ کے سناتا ہے. اپنی آیات، آیات کا لفظ بھی سمجھ لیں، آیات کہتے ہیں نشانی کو، آیات ہے نشانی، تو اپنی نشانیاں پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم، اور ایک اور چیز بھی سمجھ لیں آیت کے بارے میں، اصل میں آیت کے بہت سارے معنی ہیں، وہ لمبا لیکچر ہو جائے گا، لیکن ایک دو چیزیں سمجھ لیں آیت کے بارے میں. آیت کے مفہوم میں ہے نشانی، آیت کے مفہوم میں بھی ہے، یہ ای یا ای سے نکلا ہے جس میں تعجب ہے، یعنی تعجب دینے والی نشانی، جس چیز سے تعجب آئے نا انسان کو وہ ای کہتے ہیں. لائک ای رجل، عربی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے، کیا عظیم آدمی، ای رجل، ای کتاب، کیا عظیم کتاب. تو ای کا لفظ اصل میں تعجب بھی اس کے اندر شامل ہے. تو تعجب دینے والی نشانیاں وہ ان کو آ کر سناتا ہے. وہ یزکیہم، اور وہ ان کو کیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے، وہ انہیں پاک کرتا ہے. وہ یعلمہم الکتاب، اور ان کو وہ کتاب سکھاتا ہے. کتاب، ہم تو جانتے ہیں کتاب کیا چیز ہے اردو میں، لیکن کتاب کا ایک اور مفہوم عربی میں ہے جو اردو میں کم استعمال ہے شاید. کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے قانون کے لیے، قانون کے لیے، جس طرح کہا نا کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کتاب کر دیے گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تم پر روزے کے قانون عائد کر دیا گیا. اسی طرح کہا جو وراثت کے احکام ہیں اس میں کہا کتاب اللہ علیکم، اللہ کی کتاب جو تم پر نافذ ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا؟ اللہ کا قانون، قانون. سو کتاب کے مفہوم میں قانون زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ان کو قانون سکھاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ول حکمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ایک تمیز کرتی ہے. تو وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک مستقل لیکچر ہے، لیکن کم از کم تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ قانون، کتاب اور حکمت میں کیا کیا فرق ہے. ایک دو باتیں ابھی کے لیے کافی ہوں گی. قانون میں اصل میں بہت واضح ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اور قانون ہر ایک پر ایک ہی طرح کا نافذ ہوتا ہے. اور قانون توڑنے کی سزائیں ہوتی ہیں، قانون توڑنے کی کوئی پینلٹی ہوتی ہے. قانون توڑنے میں یہ ہوتا ہے، یہ کرو گے تو حرام ہے، یہ کرو گے تو حلال ہے، ٹھیک ہے. تو قانون ایک طرح سے بلیک اینڈ وائٹ، بہت سیدھی سیدھی لائن ہوتی ہے. اس لائن کے اس طرف ہو تو قانون میں جائز ہو، اس طرف کراس کرو گے تو حرام کے دائرے میں آ جاؤ گے، جرم کیا ہے، ٹھیک ہے. حکمت جو ہے وہ ہر صورت حال میں مختلف ہوتی ہے، اور قرآن نے جن حکمتوں کے بارے میں اشارہ دیا ہے ان میں بھی بہت رینج ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو. یہ حکمت ہے قرآن کی، زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو. یہ قانون نہیں ہے. اگر یہ قانون ہوتا تو اگر کوئی ذرا اکڑ کے چل رہا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے، اس کی پینلٹی ہونی چاہیے. لیکن کسی کی واک میں کوئی ہو سکتا ہے، لگتا ہے کہ اکڑ کے نہیں چل رہا لیکن اندر اندر سے اکڑ کے چل رہا ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ قانون کو تو آپ گیج کر سکتے ہو، اس کا جائزہ لے سکتے ہو قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن حکمت کا جائزہ لینا مشکل ہوتا ہے. وہ آپ کو انسان کو اندر سے چیک کرنا پڑتا ہے کہ میں واقعی حکمت پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو اس کا حلال حرام سے فرق ہوتا ہے. تو قرآن نے قانون بھی دیا ہے اور قرآن نے حکمت بھی دی ہے، اور دونوں کی اہمیت، دونوں مل کر ہدایت بنتے ہیں. صرف قانون سے ہدایت نہیں بن جاتی، یہ بھی بہت آسان بات ہے سمجھنے کو. جو انسان قانون کی پابندی کرتا ہے، کیا یہ لازمی ہے کہ وہ اچھا انسان ہے؟ ہر ریڈ لائٹ پہ رکتا ہے، ٹیکس پے کرتا ہے، چیٹنگ نہیں کرتا، کرائم نہیں کرتا، مرڈر نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا،
कानून का पाबंद है इसका मतलब अच्छा इंसान है ना, इसका मतलब है कानून का पाबंद है। आवाज ऊंची करता है, लोगों से बदतमीजी से बात करता है, अकड़ के चलता है, बच्चों से नरमी नहीं करता, बड़ों का अदब नहीं करता, ये सारी हरकतें हिकमत के खिलाफ हैं लेकिन कानून के खिलाफ नहीं है। इंसान का डिसेंट होना, अच्छा होना, ना से उसका उसका पहला कदम कम अज़ कम कानून का लिहाज, और उसके बाद एक मजीद मरहला क्या है कि उसमें हिकमत भी होनी चाहिए, फिर जाके वो एक अच्छा इंसान बनता है। अल्लाह ताला ने सिर्फ कानून नहीं सिखाया, कानून भी सिखाया और हिकमत भी सिखाई। हमें क्या नई बीमारी आई इस कौम को, इस उम्मत को? हम कहते हैं हराम तो नहीं है ना, हराम तो नहीं है ना, गैर कानूनी तो नहीं है ना, तो करने दो। यानी अब हमें सारा का सारा, हमारा सारा फोकस किस पर है? कानून पर। फतवा दे दीजिए, फतवा दे दीजिए कि कानूनी है या गैर कानूनी है, हिकमत के मुखालिफ हो, इंसानियत के तकाजों के मुखालिफ हो, अखलाक के मुखालिफ हो, उससे मुझे क्या, उसमें जितनी भी बेदर्दी हो, गैर कानूनी तो नहीं है ना, हराम तो नहीं है ना। तो हर एक के जमाने में बस ये बता दें, ये हलाल है कि ये हराम है, ये हलाल है कि ये हराम, हलाल हराम हलाल हराम, वो सारा किताब का मामला है। और उसमें से हमने किस चीज़ को अलग कर दिया है? हिकमत को। अल्लाह ने ऐसा रसूल भेजा जो अपनी आयात आकर सुनाए, उन्हें पाक करे, उनको कानून सिखाए और साथ ही हिकमत सिखाए। चार चीज़ें कही जा रही हैं, चार चीज़ें। पहली आयत में कितने नाम थे अल्लाह ताला के? चार नाम थे। पहला नाम क्या था? बादशाह। बादशाह को पहचाना जाता है बादशाह की जो है अजीब और बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब में डालने वाली निशानियों से। किसी बादशाहत में दाखिल होगे तो उसके बड़े बड़े महल को देखोगे, उसके फौजियों के यूनिफॉर्म को देखोगे, उसके झंडों को देखोगे, उसकी बनाई हुई सड़कों को देखोगे, और ये उसकी बादशाहत की क्या है? निशानियाँ हैं। मिस्री जो हैं उनको डर था कि और कौमें आकर उन पर हमला करेंगी, जो कदीम मिस्री हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने बड़े बड़े अहराम और जो बड़े बड़े उनके स्टैचू वगैरह थे, जो बुत उन्होंने बनाए थे और सतून बनाए थे, वो सिर्फ पानी के किनारे बनाते थे वो ज़्यादातर। क्यों? ताकि और कौमें वहाँ से गुजरें तो उनको इस कौम की बादशाहत की अलामत नज़र आए और कहें इनसे पंगा नहीं लेना, इनसे नहीं, ये देखो ये क्या क्या बनाते हैं ये लोग। तो असल में बादशाहत पहचानी जाती है निशानियों से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला अमल क्या था, क्या सुनाते हैं? अल्लाह ताला की निशानियां। दूसरा नाम क्या है अल्लाह ताला का? अल-कुद्दूस। क्या मायने थे अल-कुद्दूस के? पाक, पाक। और दूसरा अमल क्या है मेरे नबी का अलैहिस्सलाम? वो जिक्की है, वो पाक करते हैं। तीसरा नाम क्या है अल्लाह ताला का यहां पर? अल-अज़ीज़। अल-अज़ीज़ मैंने कहा था जिसके पास इक्तदार हो, जिसके पास हुकूमत हो, उसको अल-अज़ीज़ कहते हैं, इज्जत हो और हुकूमत हो। और तीसरी चीज़ क्या सिखाते हैं मेरे नबी? वयुअल्लिमुहुम अल-किताब। किताब का मैंने क्या मैंने बताया था, कानून कहाँ से आता है? जिसके पास इक्तदार हो वहाँ से कानून आता है। अल-अज़ीज़। आखिरी नाम क्या है अल्लाह ताला का इस सीक्वेंस में? अल-हकीम, अल-हकीम। और रसूल क्या सिखा रहे हैं आखिर में? अल-हिक्मा। सुभानअल्लाह। अल-मलिक, अल-कुद्दूस, अल-अज़ीज़, अल-हकीम। यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल-हिक्मा इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन।